लोकलिंगित, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जमनसाथ प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: लोकलिंगीत,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैले ले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला।
1: न्यू केल्ता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनदा नादा तरंगा।

0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला।
1: न्यू केल्ता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनदा नादा तरंगा।

0: लोकलिंगीत,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जमनसाथ प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुसाया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उही माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?